0: पाँच से आठ तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: कार होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
2: एक्सेस रैंप्स, एक्सकवेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जस बल्लू, इट्स 416-818-8900
1: और विजिट www.calidonpaving.com।
3: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Springdale Dental Center दे नाल।
4: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
5: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
3: SM Springdale Dental Center, 2260 Bovade Drive East, Brampton. Bovade Jingusi Dental Center, 811 Bovade Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-8266।
6: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
7: सस्ता

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100, बाकी एवरेज तू है सैवेज, बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हन साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टेक्ट करो।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੈਨੂਆ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਇਰ ਐਟ ਨੈਨੂਆ ਐਂਡ ਯੂਐਫਏ ਲੋਇਰਸ।
3: ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ।
2: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-793-6889।
4: आओ फिर तुहानू अजिहे सुपर लिस्ट करना चाहुंदे हो तां पाउ दा सिक्का चलदा है। कम्युनिटी तो लंबे अरसे तो सेवा करदे आ रहे मनजीत सिंह, फोन नंबर 416-716-7653 या विजिट करो उन्हां दी वेबसाइट www.teammanjeet.ca।
5: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादिया नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 & 10।
6: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
7: कैलडन सब्जी फार्म, जिथो तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चा, घिया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा। सरों दा साग, गंदला वाला बनाया बनाया लैणा विद मक्की दी रोटी, जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो। इस तो अलावा स्टील, सर्वलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे बर्तन, फोल्डिंग बेड, नवारी पलंग, मूड़े, साइकिल, तंदूर आदि खरीदने वास्ते पहुंचो 12050 एयरपोर्ट रोड इन कैलडन, एयरपोर्ट एंड मेफील, और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलडन सब्जी फार्म।
8: सत श्री अकाल, मैं हां हरकीरत सिंह, तुहाडा सिटी काउंसलर दा उम्मीदवार वार्ड 9 & 10 तों। पिछले 12 सालां तों तुसी मैनूं कम्युनिटी विच काम ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।
9: ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡਸ 9 & 10 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 10, 11, 16 ਤੇ 17 ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਕੈਂਪੇਨਸ।
10: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगास, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना हो तो आज ही आओ। सूट्स से ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल कागरा चोली जस्ट $50। मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज 6101 मेफील्ड रोड यूनिट 3 ग्राम। Call 905-794-4005।
2: यह टाटा आटो इलेक्ट्रिक का इथे हर तरह दी कार वैन ट्रक अते एक्सयूवी दे स्टार्टर अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक का स्टार्टर अल्टरनेटर जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो घर शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555 416-740-5555। टाटा ऑटो इलेक्ट्रिक।
3: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Springdale Dental Center दे नाल।
4: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
5: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
3: SM Springdale Dental Center, 2260 Bovade Drive East, Brampton. Bovade Jingosi Dental Center, 811 Bovade Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-8266.
6: The 2026 Brampton municipal election is on Monday, October 26. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance polling. Advance polling will take place on October 9, 10, 11, 18 and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekdays from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information and a list of candidates, visit brampton.ca/brampton votes. A message from the city of Brampton.
2: ਜਾ ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸੀ 647-547-8188 6475478188 Lotus Funeral Home।
7: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
8: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
7: सच्ची?
8: ओ मुच्ची,
7: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
8: इना कोड़ा सालना दा तजुर्बा।
7: हुन एड्रेस भी लिखा।
8: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबिकोक, यूनिट 5।
7: कॉल 647-706-9257 647-706-9257।

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ अपने नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जित्थो तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो। 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन, कॉल 905-450-6464 450-6464।
2: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट, लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
3: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटर्नीज बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक सलाह बल्ले बल्ले।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance,
5: we also ship cars,
3: tailor transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist.
3: HK Movers.

0: ਮਠਿਆਈਆਂ, ਸਨੈਕਸ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ, ਪਰਫੈਕਟ ਡਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ, ਲਾਈਵ ਕੇਟਰਿੰਗ ਲਈ 4 ਫੂਡ ਟਰੱਕਸ ਵੀ ਨੇ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੰਬਰ 1, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਫੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ, 680 ਰੈਕਸਟੇਲ ਬੁਲਵਰਡ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸੁਖਾ ਕੰਗ 416-679-9191।
1: ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ।
2: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगा, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ। सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल घाघरा चोली जस्ट $50। मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज, 6101 मेफील्ड रोड, यूनिट 3, ग्राम। Call 905-794-4005।
0: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार, तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन लई आज ही कॉल लाओ सरकार। 416-716-7094, मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 12 PM एंड 6 PM टू 10 PM। तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
3: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
4: ओ प्रावा, हैप्पी बड़ियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
3: सच्ची?
4: ओ मुच्ची,
3: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बड़ियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, DPF क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस A to Z सर्विस करके देंगे।
4: इना कोड़ा साला दा तजुर्बा।
3: हुन एड्रेस भी लिखा।
4: ले लिख ला, 1 Good Mark Place, Etobicoke, Unit 5।
3: कॉल 6477-0697-647-706-9257।
5: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल PR कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या OCI ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर, टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डेड रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईबनजरो जून 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 905-678-1200, 905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। कैलेडन सब्जी फार्म, जिथो तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चा, घिया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्चा अते वन सवनिया सब्जियां दा राजा, सरों दा साग, गंदला वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी, जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो। इस तो अलावा स्टील, सरवलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे बर्तन, फोल्डिंग बेड, नवारी पलंग, मोड़े साइकिल, तंदूर आदि खरीदन वास्ते पहुंचो 12050 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन, एयरपोर्ट एंड मेफील्ड, और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।
6: रियल न्यूज, रियल इम्पैक्ट, शोइंग यू रियल वर्ल्ड। CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।
7: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ।

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है।
3: ओ यार काव्य, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
4: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
5: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
6: रिट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
7: सस्ता

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: Peel Regional Council di 26 अक्टूबर नु हो रही इलेक्शन मौके ब्रैम्पटन दे वार्ड 9 अते 10 तो उम्मीदवार सतपाल सिंह जौल दा नाम याद रखना जरूरी है। स्कूल बोर्ड दे ट्रस्टी वजों सतपाल सिंह जौल दियां मिसाली सेवावां तो लोकां दे मना विच तसल्ली दी लहर है, जिस करके वार्ड 9 ते 10 दे वसनीक रीजनल काउंसलर वजों सतपाल सिंह जौल दी जित यकीनी बना रहे हन। लोकां दियां समस्यावां हल करन लई सतपाल सिंह जौल वल्लों लगातार परता नाल काम किता जांदा है। उना दी कैंपेन नाल संपर्क करन लई कॉल करो 416-895-3784 ते 416-895-3784।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 416-213-1165।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist.
1: HK Movers.
4: HK Movers.
5: टाटा आटो इलेक्ट्रिक का इथे हर तरह दी कार, वैन, ट्रक अते एक्सयूवी दे स्टार्टर, अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक का स्टार्टर, अल्टरनेटर, जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो घर शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह, 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555 416-740-5555। टाटा आटो Electric.
6: The 2026 Brampton municipal election is on Monday, October 26. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance polling. Advance polling will take place on October 9, 10, 11, 18 and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekdays from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information and a list of candidates, visit brampton.ca/brampton votes. A message from the city of Brampton.
7: ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ IPTV ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਲਾਓ ਸਰਕਾਰ 416-716-7094 ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 11 AM ਟੂ 12 PM ਐਂਡ 6 PM ਟੂ 10 PM ਤੁਸੀਂ 24/7 IPTV ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-716-7094
8: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. The voice of the city.
9: You're listening to CN.

0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ पंजाबी दिल अंग्रेजी वाइब CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया हुए छा गया हुए।
2: Visitor.
3: CJMR 1320 AM frequency radio program, TV program, Rangla Punjab mein aapki host hain dost Anju Sikha, peshe khidmat hai aapki nazar mein. Aaj ke mukh samachar aap sabki khidmat mein. No, Big Noha aur Mo, jo ki hai Saskatchewan ke premier, unhone Elon Musk ki us post ka ki Saskatchewan ko bhi Canada se alag ho jana chahiye ka remark ke upar sirf ek shabd mein kaha no. Saskatchewan premier Scott Mo ne publicly dismiss kar diya us suggestion ko jo ki aaye world ke richest man प्रोविंस को सेपरेट होना चाहिए। मो का रिप्लाई स्टेम था और इसके साथ ही साथ एलन मस्क ने इनकरेज किया है क्यूबेक, अल्बर्टा और सस्केचवान को कि वो कनाडा से अलग हो जाएं। मस्क जो कि ट्रिलियनर हैं, उन्होंने स्पेस एक्स के, टेस्ला के और X.com के, उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है क्यूबेक का प्रीमियर इलेक्ट पॉल सेंट पियर प्लामेडॉन को, जो कि कहते हैं कि ड्रीम है क्यूबेक की इंडिपेंडेंस का और उनका कहना है कि बहुत ही जल्द ये दिन आएगा। मिचिगन रिपब्लिकन माइक रॉजर्स, आफ्टर ऑल जी हाँ कोई तो है अमेरिका में जिसने ट्रंप ओवर कनाडा के टैरिफ्स को लेकर आवाज उठाई है। मिचिगन सीनेट कैंडिडेट माइक रॉजर्स ने कहा कि अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड वॉर कनाडा के साथ चल रही है एज अ रिपब्लिकन बहुत ही टाइट रेस है और उनका स्टेट सबसे ज्यादा हिट हुआ है टैरिफ की वॉर से। कैंपेन एड पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर बुधवार को। रॉजर्स ने लोगों को कहा मिचिगन कि कनाडा हमारा दुश्मन नहीं है, हमें सबको खत्म करना होगा, टैरिफ वॉर को खत्म होना होगा और हमें कनाडा के साथ एक उपयुक्त रिलेशनशिप विद द ट्रेड बनाने पड़ेंगे। लॉ जो है वो लगा है लॉ सूट जिसमें कि नेग्लिजेंस हुई है, डेथ हुई एक औरत की जिसकी उम्र 23 साल की थी, डेंटल ट्रीटमेंट में डेंटल विजिट के लिए गई थी इन मॉडर्न मैनिटोबा। जी हाँ, जुलनी स्वर्ड बाल्स है, उनके फादर वर्जीनिया में बॉयल्स, उनका कहना है कि उनकी बेटी गई थी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जहां पे उसका विजडम टूथ निकालना था, एक्सट्रैक्ट करना था और उसके लिए उसको जनरल एनेस्थीशिया दिया गया। मालूम पड़ता है कि इसी ट्रीटमेंट के दौरान कुछ ज्यादा हुई की जो मात्रा थी उसकी ज्यादा हुई और टॉक्सिसिटी वजह से उसकी मौत वहीं पर ही हो गई। पुलिस जब उसको अस्पताल लेके गई तो उसको वहां पर मृत घोषित करार कर दिया गया, सू किया गया इस डेंटिस्ट को। बैटरीज की आग लगने से काफी ज्यादा आग लग रही है, इसलिए इस खतरनाक कारण को खत्म करने के लिए फायर सर्विसेज ने इस स्टेप को बहुत सीरियसली लेते हुए मैसेज लिखा है बिग स्क्रीन्स के ऊपर जहां पे दिखाई हुई जलती हुई बैटरी के, हमें काफी ज्यादा सचेत रहना चाहिए अपने घर की लिथियम बैटरीज को लेकर। एक अज्ञात वायरस है जो कि आयोवा से शुरू है, पेशेंट जो है इसमें बीमार हो रहे हैं, हफ्तों ही बीमार रह रहे हैं और उनका कहना है कि बीमारी जब उनका वायरस खत्म होने के बाद एक दो दिन के बाद फिर से वापस उभर कर आ जाता है। कोविड टेस्ट करें या कोई और टेस्ट करें उसका तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, हालांकि कौन सा वायरस है इसका भी पता नहीं चल पाया। एक वाहिद व्यक्ति जो कि सरवाइव हुआ यूएस लीथल इंजेक्शन से, और जैसे कि हम काफी दिन से इस क्रिस्टा पाइक की स्टोरी को कवर कर रहे हैं, अब वो कन्फ्यूज है, उठ चुकी है, बार बार यही पूछ रही कि मैं कहां पे हूं। उनके लॉयर का कहना है कि उन्होंने काफी ज्यादा सफरिंग कर ली है, अब उनकी सफरिंग को खत्म करना चाहिए, यानी कि उनकी जो एक जो उनके ऊपर जो सजा है उसको खत्म करना चाहिए। गोल्डन नेकेड ट्रंप की स्टैचू यूरोपियन पार्लियामेंट में इंस्टॉल की गई, किंग ऑफ इनजस्टिस उसको कहा गया है। और ट्रंप लाइक्स गोल्ड डैनिश आर्टिस्ट है जिन्होंने ये मूर्ति बहुत बड़ी सी क्रिएट की है, उन्होंने कहा है कि ये स्कल्पचर जो है पसंद आएगा ट्रंप साहब को क्योंकि ये गोल्डन है एंड ट्रंप लाइक्स गोल्ड। लिबरल्स ने, फेडरल लिबरल्स ने एक्सटेंड कर दिए मेड एक्सक्लूजन उन लोगों के लिए जो कि मेंटल किसी इलनेस से सफर कर रहे हैं, यानी मेड मतलब है MAID की, डाइंग विथ असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग, तो उन्होंने कहा जो लोग मेडिकली बीमार है उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। कैलिफोर्निया के एक कपल को दूसरे अरेस्ट किया गया है, बहुत ही हॉरिफाइंग और खतरनाक स्टोरी सामने आई। एक चाइनीज कपल है वहां पर जो कि सरोगेसी के थ्रू यानी कि किसी की कोख में अपने बच्चे को पैदा करवाते हैं, कहते हैं कि हम अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, इस तहत उन्होंने कम से कम 23 बच्चे पैदा किए हैं और साथ ही उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, बुरी तरह से रखा जाता है। और एक 66 वर्षीय व्यक्ति है और उनकी वाइफ 39 ईयर्स की जो कि रहती है लॉस एंजलिस से 23 किलोमीटर करीब दूर, اور ان کے اوپر اچھا خاصا کیس بھی اس وقت چل رہا ہے. فلو سیزن کی بات کریں تو ریسپیریٹوری النس، یہ بیماری جو کہ سانس لینے سے کنیکٹڈ ہے، گریٹر ٹورنٹو کے ایریا میں اس سال وقت سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے. آپ چاہے دیکھیں گے آپ کے سامنے آپ کے سہ پاٹی لوگ کافی زیادہ فلو سے ہیں گرسط، جس میں کہ H1N1 یہ فیور کافی چل رہا ہے، اس سے آپ کو سچیت رہنا چاہیے. یہ تھا خبروں کا خاص بلٹن آپ سب کی خدمت میں. دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں آپ ریڈیو پروگرام ٹی وی پروگرام رنگلا پنجاب میں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست انجو سکا.
2: ریئل نیوز، ریئل امپیکٹ، شوئنگ یو ریئل ورلڈ. CJMR 1320
4: دا وائس آف دا سٹی.
5: مرنا انسان دے ہتھ نہیں، پرنتو اس سنسار تو تر گئے پرانی دا اس دیاں دھارمک رو ریتاں دے نال اس نو ودا کرنا ساڈے وس ہے. اپنی سنسکرتی اپنی دھارمک رو ریتاں مطابق انتم رسماں ویلے یاد رکھو. ریکسڈل دے وچ لوٹس فیونرل ہوم، جتھے انتم درشنا تو لے کے دا سنسکار دیاں رسماں اکو ہی چھت تھلے ہندیاں ہن. لوٹس فیونرل ہوم دا سارا سٹاف تہاڈی بھاشا پنجابی ہندی وی بولدا ہے. ودھیرے جانکاری لئی کال کرو سردار ہرمندر سنگھ ہنسی 647-547-8188
6: خوشخبری جنیٹک ٹیسٹنگ دے ماہر ڈاکٹر نشا ڈوگرا اتے انہاں دی ٹیم برامپٹن وچ تھواڈے لئی آرگنائز کرن جا رہے نے ایک فری ہیلتھ سیمینار. اس سیمینار وچ ڈاکٹر نشا ڈوگرا تہانوں اہم صحت سمسیاواں تے پاسیبل روٹ کازز بارے دسن کی ڈائٹ لائف سٹائل صحت مند بدلاو تھوڑے اوورال ہیلتھ نو کیویں سپورٹ کر سکتے نے. اکتوبر 25 دوپہر 2 بجے تو 4 بجے تک گرین بہار ریکریشن سینٹر برامپٹن وکھے سیٹس لمیٹڈ نے، اس لیے اج ہی رجسٹریشن کرو. کال کرو 604-593-5030 ڈاکٹر نشا ڈوگرا دا فری ہیلتھ سیمینار، صحت مند لائف سٹائل وال ایک چنگا قدم.

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं सुखमन सिंह तुहाड़ा वार्ड 9 एंड 10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं एक वकील हाँ, मैं कैनेडा की सब तो वड्डी लॉ फर्म विच काम करता हाँ। ब्रैम्पटन दे निवासी वधे हुए प्रॉपर्टी टैक्स अते क्राइम तो बहुत दुखी हैं। सानू रीजनल काउंसलर चाहिए जो इन्हां मुद्दियां दी आवाज उठावे। अक्टूबर 10, 11, 16, 17 दी एडवांस वोटां ते मेनू वोट पाके कामयाब करो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट sukhmansinghe.com। ऑथराइज बाय द सुखमन सिंह कैंपेन।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लै ली चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9557900045 9 9 0045 Top Choice Electronics।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र ता फूको बच्चे थे।
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा